0: ஆர் லிசனிங் டு எம்ஓபி கம்யூனிட்டி ரேடியோ 107.8. இங்கிலீஷ் தமிழ் மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம எம்ஓபி ரேடியோ ஹிந்திலையும் ஷோஸ் தொகுத்து வழங்குறாங்க. இப்ப நமக்காக அடுத்து வர ஷோ ஹிந்தி ஒலிபரப்பு சேவை.
1: नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे स्टूडियो में. आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं श्रीमती मयूरी ठक्कर जी, जो गुजरात से हैं और हमें कुछ गुजराती व्यंजन सिखाने यहाँ आई हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि वे हमें क्या सिखाने जा रही हैं. इस बीच मयूरी जी, मैं स्वागत कर लेती हूँ अपनी सहायिका प्रवक्ता डॉक्टर अनुपमा के का, और हमारी दो छात्राएं भी आपसे सीखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, माधुरी वी और आरती. तो आपका स्वागत है मयूरी जी.
2: धन्यवाद.
3: तो मयूरी जी, स्वागत है आपका. तो आज आप कौन सा व्यंजन बनाना सिखाएगी?
2: मैं गुजरात का खमन, हांडवा, खांडवी और मिठाई में पूरन पोंडी और चूरमे के लड्डू सिखाऊंगी.
3: अच्छा, सबसे पहले
2: मैं आप लोगों को खमन सिखाऊंगी, जो काफी फेमस है गुजरात का.
3: अच्छा अच्छा, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए?
2: उसके लिए आपको 250 ग्राम बेसन, आधा कटोरी चीनी, शक्कर मतलब की, एक टी स्पून साजी के फूल खाने का सोडा, या फिर वो नहीं है तो आप इनो भी इस्तेमाल कर सकते. अच्छा, हो उसके लिए हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट.
3: अदरक कितना?
2: मतलब थोड़ा सा ही, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए आप.
3: अच्छा, पीस के.
2: हाँ, दो मिर्च ले लीजिए. अगर 250 ग्राम बेसन है तो उसमें दो मिर्च और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, उसकी पेस्ट बस है.
3: अच्छा अच्छा.
2: सफेद तिल, राई
3: ले लीजिए.
2: हाँ, राई, जीरा, हींग, धनिया पत्ता बस.
3: अच्छा.
2: आप सबसे पहले बेसन लीजिए जो अच्छा वाला हो, मतलब कि मार्केट में आजकल बहुत से तरीके के बेसन आते हैं. ज्यादातर ये हो कि आप घर की दाल पिसी हुई हो जो चने की, उसका भी बेसन यूज करें तो ढोकला ज्यादा अच्छा बनता है. अगर आपको ढोकला बनाना है तो उसको जैसे कि खमन कम से कम 8 घंटे के लिए उसका घोल बना के छोड़ देना है.
4: मतलब रात को बना के सुबह उसका.
2: हाँ, आप रात को भिगो के उसको सुबह बना सकते हैं. ढाई सौ ग्राम बेसन लीजिए एक कटोरी में, उसमें एक टेबलस्पून तेल और दो टीस्पून आप दही डाल सकते हैं. हाँ, और एक टेबलस्पून शक्कर और पानी लेके उस घोल को अच्छे से, हम लोग डोसा का घोल कैसे बनाते हैं उसी तरह से उसको बना लीजिए. लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जब वो घोल रेडी करते हैं तो बेसन पूरी तरह से उसमें एकदम से मिक्स हो जाना है, पेस्ट हो जाना चाहिए. बीच में थोड़े भी गट्टे वगैरह नहीं रहने चाहिए, उससे ये होगा कि आपका ढोकला नहीं बनेगा अच्छा. अब जब भी

0: ज्यादा इस्तेमाल होगा।
1: हाँ, लेकिन छाछ भी आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये तो है कि वो उससे भी खट्टापन ज्यादा आ सकता है।
0: हाँ, वो
1: तो आप 2 टेबल स्पून की जितना दे उस हिसाब से अंदाजे से वो छाछ कर दीजिए। आप उसको रात भर छोड़ दीजिए।
0: अच्छा।
1: जब सुबह आपको बनाना है तब उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और हरी मिर्च अदरक की पेस्ट। हालांकि अदरक काफी लोगों को पसंद नहीं आता है तो कई लोग नहीं भी डालते, तो आपके टेस्ट के हिसाब से। हाँ, कि आपको पसंद आता है तो आप हरी मिर्च या अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, वरना आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। हल्दी, नमक, शक्कर तो हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं उसमें, तेल भी है, और फिर खाने का सोडा या फिर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको अपने हाथ में ले लीजिए थैली में, और 250 ग्राम बेसन के हिसाब से आधा नींबू। हाँ, आधा नींबू आप ले लीजिए, मतलब कि नींबू को काट के। और हथेली में जो आपने इनो रखा है या खाने का सोडा, उस पे उस नींबू को निचोड़ दीजिए। जब आप उस नींबू को निचोड़ेंगे,
2: नहीं, वो खाने का सोडा कितना लेंगे? 250 ग्राम बेसन का आपने बताया, तो खाने का सोडा या इनो कितना होना चाहिए?
1: खाने का सोडा आप ले सकते हो कि 1 टीस्पून, 1 टीस्पून बस है 250 ग्राम के लिए।
0: अच्छा।
1: आप जब वो खमन फूलने के लिए मेन यही है कि आप जब नींबू और वो सोडा दोनों मिक्स करें, उसका एकदम से दोनों का मिक्स होना जरूरी है अच्छे से। मतलब कि आपने हथेली में थोड़ा सा वो 1 टीस्पून ये रख दिया खाने का सोडा, और आधा नींबू आप निचोड़ेंगे उसमें, तो तुरंत से जाग होगा, जैसे कि हम कोको कोला वगैरह खोलते बोतल कैसे जाग होते।
0: अच्छा, अच्छा।
1: उसको एकदम से आप मिक्स कर दीजिए पूरा, आपने हथेली में नींबू को निचोड़ के तुरंत ही मिक्स कर दीजिए उसमें, और फिर उसको घोल में डाल के एक ही तरफ जितना तेजी से आप घुमाइए। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए कि उसको घुमाते वक्त एक ही तरफ हाथ घुमाना है।
0: ओ, एक ही तरफ?
1: हाँ, उल्टा सुल्टा हाथ नहीं, मतलब कि एक ही तरफ सीधे हाथ से आपको करना है, और उसको 2 मिनट ढकने के लिए ढक के छोड़ दीजिए। आप जब तक वो 2 मिनट ढकने के लिए छोड़ देते हो, तब हम लोग कढ़ाई में थाली रेसर कैसा कुछ स्टैंड जैसा रख दे, पहले कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए ऐसे ही, फिर जो हाँ जो चीज पे हमें थाली रखनी है वो चीज रख दीजिए, और थाली को ग्रीस कर लीजिए तेल से, मतलब कि थाली में तेल लगा लीजिए चारों तरफ, कि वो पेस्ट हम जब डालते हैं खोल तो उसमें चिपके नहीं। और उसको 2 मिनट के लिए, जब तक ये खोल का हमने रेडी करके रखा है तब तक उसको धीरे आंच पे ऑन कर दीजिए, थाली को रख के
0: थोड़ा गर्म कर लीजिए।
1: हाँ, हल्की सी थाली भी गर्म हो जाएंगी तब तक, और ये घोल का भी मिश्रण अच्छे से हो जाएगा। फिर आपको वो 2 मिनट हो गए, घोल लेके आपको सीधा उस थाली में उलट दीजिए। उलटते वक्त ये ध्यान रखिए कि आप उस घोल को ज्यादा ऐसे फैलाए मत थाली में, वो अपने आप से फैल जाएगा। फिर उसको कुछ ऐसी चीज रख दीजिए जिससे कि पाक बाहर ना आए, ढक दीजिए उस कढ़ाई को। और हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम इतना ध्यान रखते तो भी बाप बाहर आ जाती है, तो आप कुछ वजनदार चीज भी उसके ऊपर रख सकते हैं, थाली ढकी हुई उसके ऊपर, कि बाप बाहर ना आए। और उसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक, अगर मीडियम आँच है तो
0: मीडियम,
1: हाँ, और स्लो आँच है तो आपको कम से कम 15 मिनट तक उसको पकाना है। जब तक वो 15 मिनट तक आपका खमन तैयार हो रहा है तब तक आप आधा कटोरी शक्कर ले लीजिए, उसमें 1 कप पानी डाल दीजिए, उसको भिगो के छोड़ दीजिए,
0: भिगो के ऐसे ही,
1: हाँ, छोड़ दीजिए अलग से। और फिर जब आपका ढोकला हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए बंद, गैस बंद करके आप 2 मिनट बाद वो थाली निकाले, तुरंत के तुरंत नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग तुरंत निकाल देते हैं और वो बाफ में कहीं भी अगर थोड़ा सा भी कच्चा तो वो अपने आप पक जाता है, और उसका पानी भी जो होता है बाफ का वो तुरंत के तुरंत निकालने पे कभी कभी बीच में ढोकले में पल जाता है, तो उससे कि एक चिपचिपापन रहता है। तो आपको उसको 2 मिनट ऐसे ही बंद करके फिर आराम से थाली को बाहर निकालिए, एक चक्कू से आप चेक कीजिए कि खमन हो गया है कि नहीं। इसके लिए आपको ये करना है कि वो चक्कू साइड में से थोड़ा आप खमन को काटिए, अगर उसमें वो बेसन चिपकता है, मतलब कि घोल जैसा या थोड़ा भी चिपक जाता है, हालांकि थोड़ा सा वो लगता है लेकिन रवा जैसा लगेगा आपको, अगर वैसा नहीं आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा भी गीलापन है, तो उस थाली को वापस रख दीजिए। हाँ, अगर वो एकदम रेडी है तो वो आपको उसको सीधा का मतलब कि बर्फी के शेप में आप उसको

0: को काट लीजिए, फिर एक कढ़ाई लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून तेल,
1: ठीक है, 2 टेबलस्पून,
0: हाँ तड़के के लिए 2 टेबलस्पून तेल,
1: ज्यादा नहीं,
0: हाँ मतलब कई लोग ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन मेरे हिसाब से तो 250 ग्राम के लिए इतना बस है।
1: अच्छा,
0: हाँ 2 टेबलस्पून तेल लीजिए, राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च लंबी काट लीजिए सीधी।
1: अच्छा, कितनी कितनी हरी मिर्च?
0: 2 से 3 बस है,
1: 3 काफी है।
0: हाँ उसको काट लीजिए, जब आप तड़का हो जाता है ये सब राई, जीरा, हींग,
1: तिल वो भी डाल दीजिए।
0: हाँ पहले आप मिर्च सब डाल दीजिए क्योंकि तिल क्या है बहुत नाजुक चीज़ है, वो तुरंत ब्राउन हो जाएंगी।
1: हाँ।
0: तो उसको सफेद रखने के लिए आपको ये करना है कि जब हरी मिर्च आपको लगता है कि नहीं अब उसमें से तीखापन मतलब आ गया है तेल में और थोड़ा सा तली हुई जैसी हो गई, तो सफेद तिल डाल के तुरंत गैस बंद कर दीजिए। और फिर जो आपका चीनी का घोल है वो भी रेडी हो गया है, उस पानी को उसी तेल में मतलब कि जो हमने तड़के के लिए चीजें रेडी की उसमें मिक्स कर दीजिए।
1: अच्छा।
0: और फिर जो ढोकले कटे हुए पीसेस है उसको उसमें मिश्रण कर दीजिए आप, लेकिन मिश्रित करते वक्त ये ध्यान रखिए कि एकदम ज्यादा जोर से नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वो स्मूथ रहते हैं। और पानी अच्छे से मिला लीजिए कि पानी सब ढोकलों के पीसेस में मिक्स हो जाए, और फिर आप जब उसको सर्व करते हैं खाने के लिए परोसना है तब साफ सुथरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, नारियल का छीन देते हैं मतलब कि पीस खिसा हुआ नारियल, उसके साथ आप आराम से सर्व कर सकते हैं।
1: तो ये सुबह से शाम तक या फिर 2-3 दिन ऐसे रख सकते?
0: नहीं 2-3 दिन तक नहीं रख सकते आप,
1: एक ही दिन
0: तो ये है कि क्योंकि पानी से हमने छोका है उसमें, अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप बिना पानी के भी छोक सकते, तो
1: बिना पानी के भी ऐसे।
0: हाँ तो ये कि आपको मतलब दोपहर तक चल सकता है, सुबह आपने बनाया तो 6 घंटे के लिए आप यूज कर सकते हैं।
1: नहीं तो बना के फ्रिज में
2: रख, हाँ गरम ही खाते तो अच्छा लगता है,
1: गरम गरम
0: नहीं। ढोकला तो ऐसी चीज है कि आप 2 घंटे बाद खाओ तो भी अच्छा लगेगा।
1: अच्छा,
2: और एक्चुअली मैंने ऐसे ही कुछ देखा था और उस ढोकले के बीच में टमाटर और ऑनियन आई मीन प्याज उनको बारीक कटा हुआ उसको अब जब घोल डालते हैं तो वो थोड़ा सा घोल डाल के उसके ऊपर वो सब्जी दोनों जो टमाटर और प्याज है उसको डाल के फिर वापस घोल डालते हैं तो वो सैंडविच जैसे हो सकता
0: है।
2: खाते वक्त वो जो टेस्ट आता है प्याज का टमाटर का तो वो थोड़ा खटमिट अच्छा लगता है।
0: वो आप बोल रहे हो सैंडविच ढोकला है और ये प्योर खमन है गुजराती का।
3: हाँ, तो आरती ने सीख भी लिया और सिखा भी दिया। अच्छा मैं आपको बताती हूँ मयूरी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और आरती को तो बहुत खुशी हो रही है,
0: उसको काफी इंटरेस्ट आ रहा है और मैं भी उसके साथ सीख रही हूँ।
3: तो मैं बताती हूँ जैसा मैंने समझा कि बेसन ले लें और रात में थोड़ी दही, चीनी, तेल के साथ घोल के रख दे, मिश्रण इतना ही गाढ़ा हो जितना कि डोसे का होता है और उसको ढक के छोड़ दें। फिर सुबह अपने हाथ में खाने का सोडा या इनो,
0: हाँ मतलब आप जो भी यूज,
3: जैसे आपने कहा कि 250 ग्राम बेसन है तो उसके लिए एक पूरा पाउच इनो ले लिया।
0: हाँ ठीक है,
3: ये जो
0: ज्यादा से ज्यादा 2 टीस्पून या उतना ही,
3: हाँ, 1.5 चम्मच ये चाय का चम्मच, और उसको उसके ऊपर आधा नींबू निचोड़ कर और उस झाग को अच्छी तरह से मिला लेना है
0: आपको,
3: और फिर उस घोल में डाल देना है।
0: हाँ।
3: और उसमें अदरक और मिर्च अगर चाहते हैं तो मिलाएं वरना ना मिलाएं। थोड़ी सी हल्दी, हल्दी लाल तो नहीं हो जाएगी सोडा डालने से?
0: नहीं, हल्दी का अगर आप नाप बराबर रखेंगे और उस घोल को अच्छे से आप मिक्स करोगे तो नहीं होगी।
3: अच्छा, तो खूब तेज हाथ से जैसे आपने बताया कि एक ही तरफ क्लॉकवाइज तेज से घुमा के इसको 2 मिनट।
0: और मैंने इसीलिए ये भी कहा कि आप जब घोल भिगोते हो तो उसमें गड्ढे ना रहे क्योंकि उसकी वजह यह है कि गड्ढे रहते हैं तो भी ढोकले कभी कभी उस जगह से लाल हो जाते हैं।
3: अच्छा, इसको ढक के रख दिया और इसके बाद गैस पर एक भारी तले वाली कढ़ाई रखी, उसमें 1.5 गिलास आपने कहा पानी रख दो और उसके ऊपर ग्रीस की हुई एक थाली जिसके किनारे थोड़े ऊंचे हों।
0: हाँ, क्योंकि किनारे ऊंचे इसलिए जरूरी है कि जो भी वो ढोकला तैयार होगा वो उस गर्म पानी की भाप से ही होगा।
3: जी जी जी जी।
0: अगर क्या होगा किनारे वाली थाली नहीं रही तो वो आपका ढोकला वेस्ट हो सकता है, वो पानी पूरा थाली में चला जाएगा।
3: जी जी जी। और उसमें वो घोल ऐसे ही हमें बस बीच में डाल देना है,
0: जैसे हम लोग चाय फिल्टर करते हैं तो कैसे वैसे बस उसको सीधा उलट दीजिए,
3: वो अपने आप फैल जाएगा,
0: अपने आप फैल जाएगा।
3: आरती को थोड़ा शंका हो रही है कि पूरे में फैलेगा या नहीं।
0: नहीं नहीं जरूर फैलेगा। ये है कि आप घोल कैसे बनाते हो,
2: वो गाढ़े पे डिपेंड करता है कितना गाढ़ा है,
0: और थाली आप कितनी चौड़ी लेते हो, मतलब कि उस बेसन जितना आपने घोल बनाया उसी हिसाब के अंदाजा तो आपको आ ही जाएगा कि इतनी थाली में आ जाएगा
3: जी।
0: अगर वो आप थाली बड़ी लोगे और घोल कम तो आधी थाली में तो भी स्प्लिट हो जाएगा।
3: थाली का किनारा जितना ऊंचा हो उससे आधे से भी कम में ये भरना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर
0: फूलेगा।
3: और उसको अच्छी तरह से ढक दे, 15 मिनट तक पका लें।
0: हाँ, 15 मिनट तक अगर आप स्लो आंच पे,
3: स्लो आंच पे स्लो पर पका लें कि पानी भी ना ज्यादा सूखे। हाँ। और उसको अगर भाप निकलता हो तो किसी वजनदार चीज से उसके ढक्कन को दबा लें। और फिर ये हो गया, उसके बाद बर्फी के टुकड़ों जैसे काट लें,
0: स्क्वायर शेप में
3: काट लें। फिर छौंक लगाने के लिए तेल, मान लीजिए आपने 250 ग्राम का हमें दिया था बेसन का, तो उसमें तेल कितना ले लें, एक कड़छी या थोड़ा कम?
0: नहीं, एक कड़छी तो आराम से,
3: एक कड़छी जो सर्विंग बाउल सर्विंग होता है हमारा स्पून उससे लेके। और तेल में राई, जीरा,
0: हींग,
3: लंबी कटी हुई मिर्च,
0: हरी मिर्च
3: 4-5,
0: कड़ी पत्ता
3: सबको छौंक दें।
0: हाँ।
3: और पहले से जो तैयार किया हुआ है चीनी पानी,
0: सफेद तिल आपको आखिर में डालना है,
3: सफेद तिल आखिर में डालना है, और चीनी पानी का जो घोल पहले से तैयार किया हुआ है गैस लास्ट में डालें, सफेद तिल।
0: गैस बंद, आप जब गैस बंद कर रहे हो उसके एक सेकंड, मतलब कि आप बंद कर नहीं रहे हो तभी तिल डाल दीजिए, क्योंकि तिल क्या है कि फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा
3: जी,
0: और स्वाद में भी, हाँ उड़ता भी और स्वाद में भी उसका डिफरेंस आएगा।
3: और इस पानी को उसमें छौंक दें और फिर फटाफट ये सारे टुकड़े उसमें हल्के हाथों मिला दें जिससे वो टूटे नहीं, और परोसते समय उसमें हरी धनिया, कटी हुई हरी धनिया थोड़ा ही डालें, ज्यादा
0: नहीं, थोड़ा सा,
3: किसी का जी चाहे तो नारियल
0: किया हुआ
3: डाले या नहीं भी डाले,
0: अपनी अपनी पसंद पे, मतलब कि किसी को नारियल का स्वाद अच्छा लगता है, किसी को नारियल पसंद नहीं, तो आप जैसे खाना पसंद करते हो वैसे।
3: तो बहुत ध्यान से ये लोग सुन रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आज ही जाकर ये लोग घोल रखेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि बेसन अच्छा
0: हो, क्योंकि मार्केट में आजकल काफी चीजें ऐसी आती है कि मिक्स होती है, तो अगर आपका बेसन अच्छा नहीं है तो,
3: और दही बहुत ज्यादा नहीं रखे, नहीं तो
0: अभी गर्मी के दिन है तो उस हिसाब से आपको दही डालना है।
3: तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मयूरी जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। एक जैसे अभी हमारी आरती ने बताया कि हम वो सैंडविच ढोकला बनाते हैं, हाँ। बीच में कुछ सब्जियां डाल के, मैंने सुना है कि अभी जो आपने ये बेसन का बताया,
0: हाँ।
3: तो बेसन सब लोग हमेशा रोज रोज खाना पसंद नहीं करते,
0: हाँ।
3: तो ये तो आपने खमड़ की विधि बताई थी
0: जी,
3: ढोकला कोई और भी प्रकार का है जो रोज भी नाश्ते में खा सकते,
0: हाँ,
3: हैं हल्का सुपाच्य?
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया,
3: हमें जरूर बता दें।
0: एक्चुअली ये खमन है, हालांकि कई लोग इसको ढोकला भी कहते हैं और कई खमन भी, लेकिन प्योर जो ढोकला है वो अलग ही होता है, मतलब कि आपको 2 कटोरी चावल लेते हो आप
4: तो ढोकले के लिए,
0: हाँ, 1 कटोरी चने की दाल और आधी उड़द दाल, मतलब आप जितना चावल लेते हो उससे आधा तुअर दाल,
4: आधा, अच्छा,
0: हाँ,
4: जितने चावल लेते हो उससे आधा,
0: सॉरी चने की दाल,
4: चने की दाल,
0: हाँ, चने की दाल और उससे आधी उड़द दाल,
4: ठीक,
0: उसको लेके धो के अच्छे से आप भिगो दीजिए, और भिगो के फिर आप चाहे तो उसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं या फिर आप बाहर भी पिसवा सकते हैं आटे की तरह, मतलब कि जब आपको बनाना है तब ये भिगोने का झंझट नहीं।
4: तो कितनी देर तक भिगोना?
0: कम से कम 2-3 घंटे भिगो दीजिए बस
4: है। अच्छा, शाम को बनाना है तो इसे
0: शाम को बनाना है तो आपको, हाँ, दोपहर को भिगो दीजिए। अच्छा। नहीं, दोपहर में नहीं, आपको थोड़ा जल्दी भिगोना पड़ेगा क्योंकि उसको भी आपको घोल लाने के लिए 8 घंटे तक छोड़ना पड़ेगा।
4: सुबह रख लें इसे,
0: हाँ, सुबह जैसे मैंने आपको कहा खमन आपको कम से कम 8 घंटा रखना है, वैसे ढोकले का भी आपको करना है 8 घंटे।
4: अच्छा, 8 घंटे,
0: हाँ,
3: मतलब 2-3 घंटे भिगो लें, हाँ, पीसने के बाद 8 घंटा
0: आराम से आपको उतना छोड़ना ही होगा, और बस वो पीस जाए उसके बाद जैसे मैंने कहा आप थोड़ा सा उसमें भी दही, नमक और खाने का सोडा, इसमें नींबू लेने की जरूरत नहीं है आपको।
4: अच्छा अच्छा,
0: जैसे हमने खमन में दिखाया कि आप कढ़ाई में थाली रखिए गरम कीजिए, सेम सिस्टम से बनाना है, लेकिन इसमें आपको चीनी का पानी या कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप इसको बनाते हैं तो कई लोग पसंद करते हैं कि उसमें पिसा हुआ लहसुन डालते।
1: अच्छा, लहसुन
0: मतलब आजकल के टेस्ट के हिसाब से ज्यादा लोग डालते
1: हैं। अदरक डाला था
0: खमन में, हाँ, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। ये ढोकला है प्योर, वो खमन ढोकला था, ये प्योर ढोकला है। हाँ, इसको लेकिन आप जब पीसते तब ये बात जरूर ध्यान रखें कि एकदम बारीक न पीसे, मतलब एकदम बारीक रवा होता है उसको थोड़ा कुरकुरा रखे, डोसे के खीरे जैसा न बना दे। एकदम पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बारीक रवा कैसे रहता है सूजी, उस तरह से रख दीजिए। और जब आप उसको बना रहे हो तब नमक, कई लोग सफेद ढोकला भी पसंद करते हैं तो आप उसमें हल्दी ना डालें।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो उसका कलर सफेद रहेगा।
1: मैंने पीला ढोकला,
0: हाँ वही मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आजकल बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि अलग अलग तरह से बना, एक ही चीज का अलग अलग तरह से बनाना होता है। तो आपको अगर उसमें पसंद है तो आप हल्दी डालिए, अगर आपको येलो ढोकला पीला ढोकला खाना है तो, वरना आप उसको बिना हल्दी डालेंगे तो सफेद होगा।
1: अच्छा।
0: नमक, खाने का सोडा, हल्दी, बस इतना आप डाल दीजिए और एकदम से मिला के उसको कढ़ाई में जिस तरह से मैंने बताया कि खमन बनाना है उसी तरह से रख दीजिए।
1: अच्छा।
0: और जब आप उसको तड़का लगाते हो तब तेल, राई, जीरा, हींग और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, लेकिन चीनी का पानी नहीं है इसमें।
1: तो आपने बताया था चीनी और नमक
0: का पानी तो नहीं है। इसी तरह से सैंडविच ढोकला भी बनाते हैं, जैसे कि ये ही घोल रहता है, इसको पहले स्प्रेड कर थाली में आपने फैला दिया, फिर थोड़ी ग्रीन चटनी ऊपर डाल दी।
1: अच्छा, अच्छा।
0: फिर उसके ऊपर येल्लो कलर का मतलब कि हल्दी मिक्स करके वही घोल डाल दिया, तो सैंडविच ढोकला भी हो जाता है।
1: सुन के ना खाने का मन कर रहा है।
2: हमारे घर पे कैसे बनाते हैं, मतलब वो जो डोसा का बैटर होता है, वो डोसा अगर बन जाता है बैटर और कोई डोसा या इडली नहीं खाता है तो उसी बैटर से ढोकला बनाते हैं। उसी बैटर में सारा नमक मिर्च वो सब डाल के उसी बैटर का ढोकला बना देते हैं और फिर उसको ऊपर तड़का देते
0: हैं। हाँ,
2: तो वो जो बैटर है वो वेस्ट भी नहीं होता है और इडली सांभर के बदले कुछ नया खाने को मिल जाता है।
3: तो आपके आम गुठलियों के दाम हो जाते हैं। तो जैसे आपने बताया भी साधारण ढोकला बनाने का कि अगर दो कटोरी चावल,
0: हाँ,
3: तो एक कटोरी चने की दाल, एक कटोरी उड़द की दाल,
0: आधा कटोरी उड़द दाल।
3: अच्छा, आप चावल का आधा चने की दाल और चने की दाल का आधा उड़द की
0: दाल,
3: तीनों को भिगो दें। अगर नहीं भिगोए, सूखा ही पिसवा के रख लें
0: तो बहुत बढ़िया है,
3: तो भी रख सकते हैं।
0: जी जरूर, जैसे
3: आपके सोलर के हिसाब से, और हाँ, उसको भी 8 घंटे के।
0: और इसका एक फायदा ये है कि मैं आपको बता दूं कि आप जो ढोकले का इस्तेमाल करने के लिए जो आप आटा पिसवा रहे हो उससे आप हांडवा भी बना सकते हो, जो गुजराती आइटम है।
3: हाँ, तो नहीं, हांडवा तो हम जरूर आपसे सीखेंगे, हमारे यहाँ बहुत लोगों को ये पसंद है, हांडवा बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है देश में और विदेश में भी गुजराती खाना, और हमारे लिए तो अभी बहुत ही जरूरी है सीखना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से हैं और संसद के भोजनालय में भी ये बहुत
0: गुजराती
3: खाना बहुत ही अच्छे से पॉपुलर लोकप्रिय हो रहा है, तो वो तो हम आपसे जरूर सीखेंगे। लेकिन पहले सीख लें कि ये जो प्रतिदिन के नाश्ते में हल्का समझा जा रहा है,
0: सेहत के लिए भी अच्छा है और आप बूढ़े बच्चे सब खा सकते हैं।
3: तो इसमें जैसे चावल थोड़ा दरदरा ही पिसवा के रखें,
0: हाँ, एकदम बारीक,
3: अगर भिगोया भी हुआ है तो उसको बहुत मिक्स करके,
0: हाँ, मिक्स करके
3: थोड़ा दरदरा सा पीस लें, 8 घंटे के लिए छोड़ दें, नमक मिलाकर। चीनी इसमें भी मिलाए
0: नहीं,
3: तेल,
0: आप इसको जब घोल को रेडी कर देते हो भिगोने, हाँ, के लिए, तो आपको बस थोड़ा सा दही डालना है इसमें खट्टेपन के लिए, बस
3: तेल भी नहीं,
0: नहीं इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना।
3: नमक
0: जब आप बनाते हो तब नमक डाल दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नमक डालते हैं तो ज्यादा खट्टा हो जाता है शुरू में ही, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दही है।
3: अच्छा,
0: तो खट्टापन ज्यादा पकड़ लेता है।
3: ठीक है, और इसका घोल भी उतना ही पतला रहना चाहिए, जैसे कि अभी आरती ने बताया कि एकदम डोसे वाला घोल भी,
0: हाँ,
3: हम लोग,
0: लेकिन
3: यूज कर लेते, हाँ, हैं।
0: ठीक कहते हो आप, वो मज़ा से ढुक लोगे।
3: हाँ, तो हमारा भारत महान, सब, हाँ, सभी सभ्यताएं एक जगह मिल जाती। फिर इसको आप 8 घंटे तक छोड़ दिया, और जी चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट, हाँ, मिलाएं, जी नहीं चाहे तो छोड़ दें,
0: तो आप छोड़ दें,
3: मन करता है तो हल्दी मिलाएं, नहीं तो सफेद ढोकले बनाएं और इसमें नमक मिला लें, और इसमें भी फिर उसी तरह से नींबू और सोडा,
0: इसमें नींबू नहीं लेना है आपको,
3: सोडा
0: सिर्फ खाने का सोडा।
5: अच्छा, इसमें नींबू नहीं लेना है?
3: जी नहीं।
5: तो सोडा मिला ले।
0: हाँ,
5: अच्छी तरह से मिक्स,
0: अच्छी तरह से आप घोल को जितना खाने का सोडा या इनो जो भी आप इस्तेमाल करें उसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतना वो ज्यादा सॉफ्ट होगा और फूलेगा
5: जी। और कढ़ाही, भारी तले की कढ़ाही

0: पानी रख के डेढ़ गिलास और उस पर थाली को ग्रीस करके तेल।
1: थाली हमेशा मैं इसलिए कहती हूँ कि हल्की सी गर्म हो, क्योंकि हम लोग जब भी वो घोल डालते हैं तो वो थाली थोड़ी सी गर्म हो तो उससे ज्यादा ढोकले बेहतरीन और सॉफ्ट बनते हैं। आप बंद में भी डाल सकते हैं घोल, लेकिन गर्म में डालने से थोड़ा सॉफ्टनेस आता है उसमें।
0: बड़ी अच्छी बात है, वही तो असल चीज वही सीखनी है कि कैसे एक ही चीज जो गुजरात वाले बनाते हैं सीख के भी क्यों नहीं उत्तर भारतीय बना पाते, या जिस तरह के डोसे बना पाते हैं तमिलनाडु वाले क्यों नहीं सीख के भी दिल्ली वाले बना पाते हैं। तो यही सब चीजें हैं, यही सब जरूरी बुनियादी चीजें हैं। कुछ चीजें कहाँ चूक होती है तो ये है कि गर्म थाली में ही रखें, उलटने के बाद घोल को उसको पकने दें 15 मिनट तक और ध्यान रखें कि भाप बाहर ना निकले।
1: जी, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि भाप बाहर ना निकले। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड से थोड़ी भाप निकलती है और हम लोग सोचते हैं कि अच्छे से ढक दिया, लेकिन एक तरफ थोड़ा कच्चा रह जाएंगे क्योंकि उस तरफ की भाप सारी बाहर आ रही है। तो थाली पूरी तरह से मतलब कि आप ढक जाए ऐसा कुछ बर्तन उस पे रख दीजिए।
0: वजन से भी वजन से भी ठीक है, उसके फिर टुकड़े काट लें बर्फी की तरह। और इस बार छौंकते समय जैसे खमण में हमने छौंकते समय चीनी पानी का घोल बना लिया था, वो साधारण भोग में नहीं बनाएंगे। केवल तेल ले लें, अगर 250 ग्राम हमारा है ये घोल तो उसके लिए मतलब 4 चम्मच चाय की 4 चम्मच तेल, उसमें हींग,
1: राई, जीरा,
0: कड़ी पत्ता,
1: और हरी
0: मिर्च लंबी कटी हुई
1: 3 से 4।
0: जब हरी मिर्च थोड़ी लाल होने लगे तो उसमें
1: मतलब
0: डाल के गैस बंद कर दे,
1: ऐसे लगे कि उसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा व्हाइटनेस आ ही जाता है तली हुई जैसे।
0: जी जी जी जी,
1: हरी मिर्च, तो आप उसको गैस को बंद कर दीजिए। और इसमें आप ये भी नहीं गैस बंद कर दीजिए, आप ये साधारण टोकला ऑन मतलब गैस चालू है तब भी छोक सकते हैं,
0: तब भी छोक सकते हैं, थोड़ा लाल भी कर सकते हैं अगर किसी का जी चाहे तो। उसके लिए तेल थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा,
1: ज्यादा मतलब देखिए कई लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं, मेरे हिसाब से तो इतना बस है, लेकिन जो लोग ज्यादा यूज करते हैं उन लोग
0: ले सकते हैं उतना ही भर लें ज्यादा,
1: क्योंकि ऑलरेडी ये ढोकला तो रेडी हो चुका है, कच्चा तो है नहीं कि हमको सिर्फ वो तड़का उसमें मिक्स करना।
0: अच्छा, इस सफेद ढोकले को भी वही हरी चटनी
1: सेम सिस्टम है,
0: सेम गरम खाए तो अच्छा है। मयूरी जी, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बता दी कि 3 तरह के हमने ढोकले सीख लिए। तो गरम खाए तो ज्यादा बढ़िया है।
1: जी, गरम खाने से तो खमन का भी टेस्ट एकदम अलग से आता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं।
0: जी जी मयूरी जी, बस एक मुझे संदेह है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भाप नहीं निकलना है तो क्यों नहीं चौड़े मुंह के कुकर में इसको बना लें, थाली वैसे ही रख के और कुकर को पूरा ढक दें, भाप खाली थोड़ा सा सीटी ना डालें, तो क्या उसमें बनाया जा सकता?
1: आपका ढोकला बिल्कुल भी नहीं बनेगा इस तरीके से, नहीं,
0: खिचड़ी भाप निकलता रहता है ना।
1: नहीं, क्योंकि देखिए भाप निकल जाएंगे अगर आप उसको सीटी विसल लगा देंगे
0: तब
1: तो फिर वो नहीं होगा, मतलब
0: और विसल ना भी लगाए तो भाप निकलता रहेगा।
1: चाहे कुकर में रखिए और ढोकला बना सकते हैं, लेकिन उसको आपको ढकना तो थाली जैसी कोई चीज है जिससे भाप बाहर ना आए।
0: हाँ, मतलब क्योंकि उसमें तो निकलता है।
2: आपको वो कुकर का ढक्कन देख के उसके जो उधर से विसल डालते हैं ना, उसके जगह पे अगर कोई कटोरी
1: बिल्कुल ठीक
2: तो बना सकते हैं
0: कि प्रेशर भी ना बने और बहुत अच्छी।
1: सबसे बड़ी चीज यही है कि इसमें भाप ना निकले, मैंने इसीलिए कहा कि जब भाप निकलती है थोड़ी सी तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं एक तरफ से तो भाप निकल मतलब है थोड़ा सा ही निकल रहा है, लेकिन उस जगह से ढोकला अच्छा नहीं बनता है।
0: वाह, तो बहुत अच्छी बात बताई और जरूर आरती ट्राई करोगे?
2: हमारे घर पे बनता है,
0: तो आप भी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ यहाँ कुछ गुजराती व्यंजनों की विधि बताने के लिए फिर से उपस्थित हैं श्रीमती मयूरी ठक्कर, साथ में हैं डॉक्टर अनुपमा के और हमारी दो छात्राएं माधुरी वी और आरती। तो मयूरी जी, आपसे हमने सीखा, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन सीखे। खम्मन ढोकला सीखा, हम तो जानते थे कि ढोकला एक ही तरह का होता है, लेकिन आपने बताया खम्मन ढोकला, फिर आपने बताया सफ़ेद ढोकला जो कि बहुत ही हल्का होता है और प्रतिदिन भी खाया जा सकता है, और तीसरा आपने हमें बता दिया सैंडविच ढोकला। आज आप हमें क्या सिखाने जा रही हैं?
1: आज मैं आपको सिखाऊंगी पूरन पोली।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है। पूरन पोली तो सबको पसंद है, पसंद है? हाँ, ठीक है। तो पूरन पोली हमें बताएं, ये महाराष्ट्र का व्यंजन है या गुजरात का?
1: ये गुजरात का भी और महाराष्ट्र का भी है, लेकिन ज्यादातर इसको महाराष्ट्र लोग अपने त्योहार पे खास तौर पे बनाते हैं,
0: खास तौर से बनाते हैं। हाँ। जी, ये उनका त्योहार का।
1: हाँ, जब भी उनके यहाँ कोई भी त्योहार है, जैसे कि गुड़ी पाड़वा है,
0: हाँ हाँ,
1: या फिर उनका नया साल दूसरा आता है रामनवमी के बाद का, मतलब जो भी त्योहार है, उपवास वाले दिनों में नहीं, लेकिन ज्यादातर वो लोग बनाते हैं,
0: जरूर बनाते हैं।
1: मतलब ये रहता ही है उनके घर में पूरन पोली,
2: और उसको घी के साथ खाते हैं, तो उसको
1: घी ऊपर से लगा के खाते हैं।
2: और
1: उसको
2: हमारे यहाँ तो घी के साथ उसको सब्जी, घी को सब्जी जैसे लगा के खाते हैं हमारे।
1: हाँ, कई लोगों का मतलब स्वाद होता है, कई लोग पूरन पोली को दूध के साथ भी मतलब खाना पसंद करते हैं।
0: अच्छा, तो खैर हम अपनी छात्राओं को ये मशवरा तो नहीं देंगे कि घी में डुबो के खाओ, ये अपनी फिगर के प्रति बहुत ही सचेत है। तो आप हमें बताएं पूरन पोली कैसे बनाते हैं प्लीज।
1: पूरन
3: क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए?
1: उसके लिए आपको आधा किलो तुअर दाल, 400 ग्राम गुड़, या फिर जो लोग गुड़ खाना पसंद नहीं करते वो चीनी भी ले सकते हैं, शक्कर,
3: गुड़ के बदले।
1: हाँ,
3: तो गुड़ तो ऐसे स्वास्थ्य के लिए तो,
1: हाँ, अच्छा। मैं अगर मुझे पूछे तो मैं यही कहूँगी कि शक्कर से ज्यादा आप लोग गुड़ इस्तेमाल करें। आधा किलो तुअर दाल या फिर चने की दाल भी ले सकते हैं आप।
3: अच्छा,
1: महाराष्ट्र में ज्यादातर जो पूरन पोली बनाते हैं, जैसे कि मैम ने कहा, तो वो चने की दाल की बनाते हैं,
3: तो स्वाद अलग होगा।
1: हाँ, थोड़ा बहुत, हम लोग गुजराती लोग ज्यादातर तुअर दाल की बनाते हैं। तो आधा किलो तुअर दाल लीजिए, 400 ग्राम गुड़, घी, एक टेबल स्पून गेहूं का आटा,
3: घी कितना,
1: घी 2 टीस्पून बस है,
3: 2 टीस्पून ज्यादा नहीं।
1: हाँ, मतलब कि आगे चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम लोग जब ये पूरन रेडी करेंगे उसके लिए 2 टीस्पून घी बस है,
3: काफी।
1: इलायची का पाउडर,
3: एक टीस्पून
1: जायफल का पाउडर ले लीजिए, खसखस,
3: खसखस,
1: हाँ, मतलब अगर आप पसंद करते हो तो खसखस इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: पानी में
1: नहीं, नहीं, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी, पूरन में ही करना है उसको। सबसे पहले आप दाल को अच्छे से धो लीजिए, तुअर दाल हो या चने की दाल हो, जो भी, उसको अच्छे से धो के आप कुकर में उसको बाफ लीजिए। लेकिन जब आप कुकर में उस दाल को रखते हैं बाफने के लिए, तो ये ध्यान रखिए कि जितना हो उस हिसाब से पानी डालें, मतलब कि दाल चढ़ भी जाए, मतलब कि पक जाए और उसमें पानी भी न बचे।
3: अच्छा, इस तरह।
1: हाँ,
3: उसी के हिसाब से पानी डालना चाहिए।
1: अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है कि मतलब पानी थोड़ा ज्यादा हो गया और दाल गल गई है और वो हो गया, तो वो पानी भी
3: आपने गलना नहीं,
1: दाल चढ़ जानी चाहिए और उसके दाने दाने दिखने चाहिए, इसे मतलब उस हिसाब से आप पानी डालिए। अगर कभी आपसे पानी ज्यादा हो जाता है तो वो हम लोग निकाल भी सकते
3: हैं।
1: हाँ जी जी, कुकर में आप दाल को उबाल लीजिए। उबालते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पानी जितना जरूरी है दाल के हिसाब से ही डालिए। अगर आप दाल उबाल लेते और पानी ज्यादा बच गया तो भी फिक्र करने की कोई बात नहीं, हम उस पानी को अलग से निकाल देंगे। मतलब कि दाल को ऐसे अलग से रखना है कि पानी कम हो और दाल अच्छे से पक जाए।
3: अच्छा,
1: फिर एक कढ़ाई लीजिए, उसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लीजिए,
3: मतलब कि
1: हाँ,
3: अच्छा,
1: और उसको हल्की आंच पे आप गरम करने के लिए रख दीजिए। उसमें फिर जो दाल है चने की या तुअर दाल, उसको डाल के, गुड़ है अगर चीनी है तो जरूरत ही नहीं कि हम लोग वो करें, गुड़ है तो थोड़ा सा उसको काट लीजिए कि जल्दी से उसमें मिश्रण हो जाए उसका, क्योंकि दाल पहले ही काफी हम लोग उसको बाप चुके हैं और ज्यादा गर्म करने से वो भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ेंगी। तो कटा हुआ गुड़ उसको धीरे से धीमी आंच पे तुअर दाल को रख, या चने की दाल आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसको रख दीजिए, फिर गुड़ को धीरे धीरे उसमें मिक्स करते जाइए। हाँ, लेकिन आप वो मिश्रण हिलाते रहना है, ये नहीं कि आपने छोड़ दिया बीच में, क्योंकि उससे क्या होता है कि कई बार वो जल जाता है या चिपक जाता है तो उसका स्वाद खराब हो जाएगा। आप जैसे जैसे उसमें मिक्स करते हैं फिर एकदम से, आपको कभी लगता है कि नहीं मेरा पूरन एकदम से मतलब ये नहीं हुआ, थोड़ा सा वो पानी है उसमें, मतलब कि एकदम कठिन होना चाहिए सख्त, वैसा नहीं है।
3: अच्छा,
1: तो आप उसमें गेहूं का आटा जो एक टेबल स्पून मैंने बताया आप लोगों को,
3: हाँ नहीं बताया आपने
1: कि लेना है, वो उसमें आप मिक्स कर दीजिए। उससे क्या होगा कि
3: थोड़ा
1: गाढ़ा हो जाएगा, और फिर उसमें इलायची का पाउडर अगर लोग पसंद करते हैं खाना तो इलायची का पाउडर, जायफल का थोड़ा सा, मतलब एक एक टीस्पून ले लीजिए आप इलायची पाउडर, एक टीस्पून जायफल का पाउडर, और खसखस थोड़ी सी, आधी टीस्पून भी बस हिसाब से। आप उसको एकदम से अच्छे से, जब वो पूरन हम लोग रेडी कर रहे हैं गैस पे तभी थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको ये देखना है कि आपका पूरन एकदम से अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं, तो आप जिस चम्मच से वो उस पूरन को मिक्स कर रहे हैं उसको आप एक ये देखने के लिए कि उस स्पून चम्मच को आप बीच में खड़ा कर दीजिए, पूरन के बीच में से रख दीजिए, तो वो थोड़ा सा रुकेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका पूरन एक तरह से
3: जाना चाहिए। अच्छा,
1: हाँ मतलब खड़ा रह जाएगा
3: तो बहुत अच्छा,
1: तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि नहीं मेरा पूरन एकदम से रेडी है, तैयार है करने के लिए। अगर नहीं तो फिर आप उसको और थोड़ी देर गैस पे चलाते रहिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि एकदम धीमी आंच।
3: अच्छा धीमी,
1: हाँ थोड़ा भी मीडियम भी नहीं, इसमें एकदम धीमी आंच पे मिक्स करें
3: तो जल जाएगा।
1: हाँ, फिर हो गया, उसको एक ग्रीस की हुई थाली में पूरन को ठंडा कर दीजिए।
3: ठीक है,
1: फिर हम लोग लेंगे गेहूं का आटा, उसमें घी का मोन डाल दीजिए थोड़ा, जैसे कि मैंने बताया कि 2 टेबलस्पून घी लेना है, लेकिन कई लोग ये कि ज्यादा घी खाना पसंद करते तो वो लोग ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, 4 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ। तो आप उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, और हम लोग जैसे नॉर्मल रोटी का आटा गूंथते हैं वैसा नहीं, उससे थोड़ा सख्त, मतलब कि पराठे के जैसे आटा गूंथना है। फिर उसकी छोटी रोटियां बना लीजिए पूरी के शेप की, उसमें जो ठंडा किया हुआ पूरन है उसको भर दीजिए।
3: तो भर के पानी चाहिए, गर्म पानी से?
1: इसमें पानी की जरूरत नहीं, हम नॉर्मल आटा गूंथते वैसे ही। हाँ, इसमें गर्म पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि गर्म पानी से होगा कि ऑलरेडी हम मतलब पहले हम लोग इतना पूरन सब काफी देर तक गैस पे वो किया है, और आटा भी गर्म पानी से बांधे तो उसका स्वाद वो हो जाएगा।
3: अच्छा, रोटी के लिए कभी कभी हम
1: हाँ
3: गर्म पानी भी?
1: हाँ नहीं,
3: इसके लिए बिल्कुल।
1: हाँ, और ये ध्यान रखे कि एक रोटी जैसा आटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब पराठे जैसा। हाँ, लेकिन नमक नहीं डालना है।
3: ओ, नमक नहीं डालना?
1: नहीं
3: बिल्कुल
1: नहीं, हम लोग रोटी का आटा गूंथते वैसे ही, लेकिन वो थोड़ा सख्त हो, मतलब कि पराठे जैसा हो।
3: अच्छा, और बिना नमक के?
1: हाँ, बिना नमक के। और रोटी को थोड़ी सी छोटी पूरी की तरह आप बेल लीजिए, उसमें पूरन भर के उसको चारों तरफ से कवर, मीडियम साइज की जैसे हम रेगुलर पूरी खाते उस तरह से रोटी, हाँ बेल लीजिए, उसी में आपको स्पून से या अपने हाथ से जैसे आपको कंफर्टेबल होता है वैसे आप वो पूरन भर लीजिए, और उसको फिर कचौड़ी की, हम लोग जैसे कचौड़ी आप पैक करते हैं या जो भी, उसको पैक कर दीजिए और फिर वापस उसको आप बेल लीजिए, मतलब रोटी के शेप में
3: पूरी तरह से भर जाएगा उसके अंदर।
1: हाँ,
2: इतना ही डालना जितना
1: आप
2: अंदर जा सकते,
1: हाँ।
2: ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, वो एकदम हाँ। अंदाज से ठीक से डालना पड़ता है उसके लिए।
1: और फिर उसको एक गैस पे तवी रख दीजिए और मीडियम आंच पे दोनों तरफ पकाइए, लेकिन पकाते वक्त आपको घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है,
3: खाली ऐसे।
1: हाँ, ऐसे ही, ज्यादा फास्ट पे मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जल जाता है, मीडियम आंच ज्यादा अच्छा है। मीडियम आंच पे आप उसको पका दीजिए, और जब आप की पूरन पोली हो जाए तो उसके ऊपर एक चम्मच घी लगा दीजिए, इसको आप जैसे इन्होंने बताया कि घी में डुबो डुबो के खाते हैं, वैसे घी में डुबो डुबो के भी खा सकते हैं, या फिर दूध के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ भी, मतलब अपने अपने स्वाद के अनुसार खा सकते हैं।
2: तो बहुत अच्छा पूरन है वो, अपन कितने दिन तक रख सकते हैं, या कितने, एक दो दिन वो पूरन
1: आप बाहर नहीं रख सकते,
2: फ्रिज में रख,
1: हाँ फ्रिज में जरूर जरूर, फ्रिज में दो तीन दिन तक वो खराब नहीं होता है। लेकिन ये है कि आप जैसे पूछ रहे हो वैसे ही मैं वापस ये बात कह दूं कि उसमें पानी का आप ध्यान रखिए, दाल जब आप उबालते हो या फिर पानी ज्यादा हो जाता है और दाल एकदम से उबल चुकी तो वो पानी आप निकाल दीजिए पूरन बनाने से पहले, क्योंकि पानी का थोड़ा भी भाग रहेगा और गुड़, तो गुड़ भी थोड़ा बहुत तो पानी, मतलब वो गर्म करने पे मिक्स होने पे होता ही, तो आपका पूरन अच्छा नहीं बनेगा।
0: ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बता दी पूरन पोली, और मैंने जैसे सीखा मैं उस तरह से आपको बताती हूँ कि चने की दाल ले लें जितनी जरूर। अच्छा मयूरी जी, आपने आधा किलो चने की दाल या तुअर की दाल, गुजरात वाले तुअर की दाल लेते हैं, महाराष्ट्र वाले चने की दाल लेते हैं, और हम लोग भारत के वासी हैं तो जो जी चाहे वो ले लेंगे। मयूरी जी आपने बताया कि ये दाल लें आधा किलो, तो गेहूं का आटा कितना लें?
1: आधा किलो तुअर की दाल है तो उस हिसाब से पौने किलो गेहूं का आटा चाहिए,
0: पौना किलो आटे के लिए आधा किलो दाल,
1: हाँ क्योंकि उसमें 400 ग्राम गुड़ आएगा तो पूरन बढ़ जाएगा ना।
0: जी जी जी, तो दाल ले लिया उसको,
1: ये कम से कम मैंने जो रेसिपी बताई वो आठ लोगों के लिए।
0: अच्छा, मतलब दाल ले लिया अच्छे से धो, साफ करके धो लिया, और उसके बाद उसको पकाने के लिए रखना है, या तो कुकर में या खुले बर्तन में रखिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो लिचपिची ना होने पाए।
1: मतलब हम लोग रेगुलर दाल बनाते हैं,
0: सीझ भी जाए और खड़ा भी रहे, सीझा तो हो लेकिन खड़ा रहे। फिर एक भारी तले के कढ़ाई में घी रखकर
1: घी को ग्रीस कर, घी से ग्रीस करनी,
0: खाली ग्रीस करना है, और उसमें ये दाल और गुड़ दोनों को मिलाना है तब तक कि दोनों अच्छा मिल जाए, और मतलब ऐसा भी नहीं कि वो भी लिचपिचा ना हो
1: जी,
0: और आपने कहा कि चम्मच खड़ा हो जाए इतना तक वो सख्त हो, ताकि वो भरने में बने।
1: बिल्कुल ठीक आपने, इसीलिए कहा मैंने कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं हो गया पूरा,
0: जी, जी जी,
1: और जब हम बेलने लेते तो अच्छे से नहीं हो पाता।
0: मतलब ये पूरा ध्यान रखना है पूरन बनाते समय,
1: अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी पूरन वो हो रहा है तो आपको जैसे मैंने कहा एक टेबल स्पून गेहूं का आटा आप उसमें
0: मिला सकते हैं, ताकि वो भरने के लायक हो।
2: जी, तो वो रोटी गीली हो जाती है पानी से, बन नहीं
0: पाती, बनेगा नहीं। बिल्कुल ठीक आरती ने कहा कि वो हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कचौड़ी में भरने के लिए हम पूरन बनाते हैं, तो इसी तरह से ये भी बनाए कि ज्यादा लिचपिच ना हो जाए, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं, बेलने में ही नहीं बनेगा।
1: हाँ जी,
0: पूरन बना के रख लिया, इसको थोड़ा ठंडा होने देना है, और इस बीच जैसे हम साधारण पराठे का या पूड़ियों का आटा बनाते हैं गूंथते हैं, उस तरह गूंदे, नमक अजवाइन वगैरह ना
1: कुछ भी ना डालें,
0: साधारण आटा और घी
1: जी,
0: जितना मोयन आपको चाहता है, जैसे आपने कहा कि पौना किलो आटा है तो 4 चम्मच घी डाल लें, कम भी डाल सकते हैं थोड़ा, और थोड़ा सख्त गूंद लें साधारण पानी से, और फिर इसको भर के छोटी छोटी पूड़ियां जैसी बना लें और सेक लें।
1: डीप फ्राई कर सकते हैं क्या? डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि उसको डीप फ्राई करोगे तो स्वाद बदल जाएगा,
0: स्वाद ही बदल जाएगा, थोड़ी सख्ती भी आ जाएगी, और ये नरम रहता है।
1: हाँ, जैसे हम रोटियां सीखते हैं
2: फूटने की भी बहुत चांसेस है, अंदर गया तो तेल के अंदर वो अगर फूट गया तो सारा
0: बनाया निकल जाएगा।
1: हाँ, इसको मैं ये भी कह रही हूँ बार बार कि आप तवी पे भी सेकते हो तो घी या तेल का इस्तेमाल ना
0: करें, सूखा ही सेक लें, और ध्यान रखें कि वो जले
1: नहीं। हम लोग कैसे फूल के बनाते तो उसको गैस पे डालते, लेकिन ये कि इसको तवी पे ही बिना घी तेल के हमें सेकते रहना है मीडियम आंच पे। हाँ,
0: समान साइज के सारे बना लें और बाद में घी लगाएं।
1: हाँ,
0: और चाहे तो खीर के साथ परोसें, चाहे तो लापसी के साथ परोसें, चाहे तो दूध या घी के साथ खाएं, जैसे जिसकी मर्जी।
1: जी जी,
0: तो बहुत अच्छी बात आपने सिखा दी हमें पूरन पोली के बारे में। हमारे यहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, लोक कथा, कि एक कोई आदमी गया और अपनी नई ब्याहता पत्नी को लेकर आया, और इसकी माँ ने कभी पूरन पोली बनाई नहीं थी, पत्नी आई तो उसने पूरन पोली बनाए, और ये बुद्धू लड़का, इसको समझ नहीं आया कि इसने इसमें पूरन भरा कैसे। तो वो कहता है कि अपनी माँ को कहता है कि माँ मैं तो किसी मनुष्य की बेटी को ब्याह के लाया नहीं, ये तो लगता है कि देवी है, कि तोड़ली न ताड़ली पूरा न कैसे भरली, मेहरी न है गौरा पार्वती है। मतलब मुझे लग रहा है कि इसने तोड़ा ताड़ा तो कुछ नहीं, कहीं से टूटा नहीं है, और पूड़ियों के अंदर ये पूरन गया कैसे, तो ये मानवी नहीं है, लगता है गौरा पार्वती साक्षात अपने घर आई है। तो हमारी छात्राएं भी जरूर बनाएंगी इस तरह और गौरा पार्वती का पद पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयूरी जी, साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी छात्राओं का।